सुखदायी न कतु कातु बाता पूरन होए मिलियो सुखदायी न काई बाता तत्सार ब्रह्म पद पाया छुड़ न कतु जाता बन्ना सको जैसा तू हाँ सच लाख पारा तुल था अडोल स्वामी नानक अजम मारा राम कले माला पंजवा तू दाना दो अब जल तू ही तू जात मेरी पाती तू डोल कद डोले नाही राम का सीता ती ये कह कह तू ही ये कह कह तू राया तो कृपा दे सुख पाया रहा तू सागरा मांस तुम्हारे तुम माणक लाला तुम देवो तेल संकना मानो हो हम पंचे सदा दे हला हम बारक तुम पिता हमारे तुम देव खीरा हम खेले सब लाड लडावे तुम सदगुणी गहीरा तुम पूर्ण पूरा है संपूर्ण आपे संग गाए मिलत है मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए राम गली महला पंजवा कर कर ताल पुखाव जने नो माथे बजे हे रे बाबा कर नो मद बासरी बाजे जिवे तुने गाजा निर्गरे कर मनवा नाच आने कुगर साजा राम को नृत करी पिक पिक नहार दयाला जित साज सिगारी राव अखार मंडली तरण सबाई उपर गगन चंदो वा पवन चो ला करत के ला जलत उपद हो वा पंच तत कर पुत्र के ना करत मिलावा हुआ चांद सूरज दो जर चरा गा दो कुंड पितर राके दस बातो पंच संगीता का पितर साथी।

जय हो तुरा। कहो नानक सो बोहर नाचे जिस गोर पेटे पूरा। राम कली महला पंजवा। ओंकार एक तुन एक राग लापै एक देसी एक दिखावे एक रहा एक रहा व्यापै एक सुरदे का ही सेवा एक गुरते जापे पलो पलो रे कीर्तन या राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया का तहंद स्वभाव राओ पंच बचत।

महादेव कीर्तन गावे सत्संग जाव टेक कहु नानक तसे कीर्तन एक राम कली महला पंजवा कोई बोले राम नाम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई लाहे कारण करण करीम कृपा तार रहीम रहाव कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर निभाए कोई पढ़े वेद कोई कते बो कोई उड़े नीर कोई सफेद कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू कोई भाषा पिस्त कोई सिर हिंदू को नानक जन हुकुम पेशाता प्रभ सब गतिन भेद जाता राम गली महला पंजवा पवन पवन सुवाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी हो एक रोबन हर की कवन टेक कौन मुआर कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा ये तो चलत पया रहा अगली किस खबर न पाई रोबन हार पे उठ सदाई परमो के बंदे बंद सबन पे पखलाए आंद ये तो रचन रचया करतार आवत जावत हुकम अपार

चल जत जोगी आसन तेरा सिंगी बाजे नित उदासेरा गुरु गुर गोरख की ते बूझ न पाई फिर जोगी आ वह जाय जिसन हुआ नाथ कृपा ला रहा।

नार भरन जो निपाए जाक अंतर प्रगटो आप ताको नाही दुख संताप। लाल रतन तिस पल परया सगल कुटाम्ब ओजल तरिया नगज परम ना दुबदा दूजा एक निरंजन पूजा। जगत देखो आप दयाल कहो नानु प्राप मिले रसाल। राम कली महला पंजवा तंत सुट गए अपने तो हरी प्रभु की आगे लगी प्यारी। जो कुछ कह रहे सो मर मर मीठा ताए वचर नैनू डीटा। हम जानी रे मेरी गई बुलाए बोज गए त्रिशन निवारी ममता। गुरपुरे लियो समझाए राव कर कृपा रख गुर सरना। गुर पकराए हर के चरना बीस बिस है जो हम डराने। गुर पर ब्रह्म के ही जाने जो जो कीनो हम तिसके दास। प्रभ मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बराई कर मिल चाले। कह पाए जा को गुर हर दिए सूखा ताको बहु न लागे दुखा। आप सर प्रतपाल नानक रा तो रंग गोपाल। राम गली महला पंजवा मुक्त पड़ता टीका।

कृपा दे हृदय वास भवजल पार परला रहा नाम निदान त्याय मन अटल ता छुटे माया के पटल गुरगा शब्द अमृत रस पियो तो तेरा ओ निर्मल जियो सोध सोध सोध बिचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साधगा संग मंतन रप हर का रंग छुड़ छाण चितराई मन बिन हार ना वह जाय नकाई दतारी हे गोविंद गुसाई हर हर नाम हर हर नानक टेक टकाई राम गले महला पंजवा संग संग्राम रंग हकेल आगे जम से होय न मेल अंग बुद्ध का भया विनाश धर्म होई सगली नास राम नाम गुण गाए पंडित कर्म कांड अहंकार न काज कुशल से थी कर जाहे पंडित राव हर गजस ने दे लिया लाभ पूर्ण पय मनोरथ साब दुख नठ सुख कर्म आया संत प्रसाद कमल बिकसाया नम्रत ने जिन पाया दान ते जान होए सगल निदान संतोख आया मन पूरा पाए फिर मांग न काहे जाए हर की कथा नेत हर की कथा सुन तपवेत जेवा भगत पाई गत मेत सुप्रवान जस हृदय बसाई नानक तेजन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गोकर पकड़ी ना आई हाथ प्रीत करी चली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दही ताब्यो चरणी आई पाई सुन सुन दो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपुरा पेट तो उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उस को कोई मन पर हर तब सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ढगावे एक ठोरो कही ना समावे उन मोहे बोते ब्रह्मांड राम जने किन्नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे एस संग राज सुख सुना लह इस त्याग सत्संगत गार है बड़बागी नारक होता रहे राम कली महला पंजवा आत्म राम शर्मा पेक पूर्ण पूर रहा प्राभेक रत्न मोल हृदय में जान अपनी वस्तु आप शान पिय अमृत संतन पर का प्रसाद बड़े भाग होवे तो पाइये बिन जे वाक्या जाने स्वाद रहाओ अर्थ देश सुन कर डोरा कोट प्रकाश न दिस अंधेरा पशु प्रेत कास संग रच जिस नहीं बुझे सुखित बिद बुझे जन हार रया प्राप जान उत्पोत भगतन संगान बिकस बिकस अपना प्रभ गा वह नानक तिन जान नेड़ नया वह हे राम कली महला पंजवा दिन नाम की पेत हर दिन रास निरास एह बेत काटी बंद हर सेवा लाई काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत नाम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रस रस गुण गावे हर जन अपने गुरुदेव निवाजा राव आए बने पूर्वला भाग जन्म जन्म गा सोया जाग गई गए गिलान साध गया संग मंद रात हर कर रंग रख रख नार दयाल ना किस सेवा ना किस काल कर कृपा प्राप किन्नी दया बुढ़ दुख में काट लया सुन सुन उपजो मन में चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत है परम गात पाई गुरु प्रसाद नानक ले बुलाई राम कली महला पंजवा कौटी बदले त्याग रतन छुट जाए ताहुका जतन सुसंच है जो सी बात माया मोया टिडो जात भाग्य दला जनाही सुख सागर पुर परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही राव अमृत कौरा बिख्या मीठी सागत की बिद नैनो डीटी कूड़ कपट अहंकार रिजा ना नाम सुनत जन पिछू डिसाना माया करण सदि चूर है मन मुकब न स्तुत कर नृप निरंकार दातार तिस प्रीत न कर गवार सब सह सिर सच साहो बेमोताज पूरा पात साहो मोह मगन लपट्यो प्राम ग्रह नानक तरिय तेरी मेहर राम कली महला पंजवा रण देस जपो हर नाव आग दुर्ग पावो थाओ सदा नंद न होवि सोग कब न व्यापे हमें रोग कुछ संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा परम गत पावे हर सिमर प्राणी रहाओ
गर्म देह को सगल विचार ना बिना को सके ना तार सगल पावना चलनहार सगल पावना चले संग पव जल तरिए प्राप कर रंग दे तो न उतर महल हम व्यप दुबद फैल हर हर उखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कबो न बिसर गोपाल तेरे दास के हवा तूर नानक प्रभ सरदा पूर राम कली महला पंजमा तेरी शरण पुर गुर देव तुत बेन दूजा नाही कोय तू सम्राथ पुन पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जैस कर्म तरण तरण प्राप तेरो नाव का शरण गई मन मेरे तुत बिन दूजा नाही ठाउर हाउ जब जब जीव तेरा नाओ आग दर्ग पाव उठाओ दुख दे रामंत जाय धर्मद बिन सहरा चर नाय चन कमसला गिब्रीत गुरपुर की निर्मल रीत भागा निरप मन बस अमृत नाम रसना नित जप कुड़ जन्म के काटे पाहे पया लाभ सच्चा तन लाहे तुटना वह कुट भंडार नानक भगत सोहे हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जवेहर नाम ससंतोख ज्ञान सुख से दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार कात कर्षित कस तोड़ना वह अंत नहीं हर पारा वार राव कीर्तन निर्मोल कहीरा आनंद गुणी गहीरा आनंद बाणी पूंजी संतन हथ रखी कुंजी संसमाद गुफा तह आसन केवल ब्राह्मण पुरंत है बासन भगत संग है प्रभ गोष्ठ करत तह अर्क न सोग न जन्म न मरत है कर कृपा जस आप दिवाया सा संग ते न हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास राम कली महला पंजवा महिमा न जाने भेद ब्रह्म न जाने भेद अवतार न जाने अंत अवतार न जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जाने सुन सुना वर बखाना राव शंकर ने जाने पे वह खोज तहारे देव देविया ने जाने मरम सभी ऊपर लख पार ब्रह्मा अपने रंग करता केल आप जो आप मेल एक परमेक भक्ति लाए अपने किया आप जनाए संतन की सुन साची सा की सु बोले जो पेखया की नहीं लेप तिस पुन पाप नानका प्रभ आपे आप राम कली महला पंजवा किशु काज न कियो जान सुरत मत नाही कैश ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किशु न जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुद मैं तू जाया वरना कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ रिद न बुद्ध न सिद्ध प्रकाश रिद न बुद्ध न सिद्ध प्रकाश बिग ब्याह देखे गा मैं बास करण हर मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीव मन में विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरु नाम तू अगणित जी का दाता है जिस जड़ावे तिन तू जाता जो पायो ते तेरी आस सगल राधे प्रभ गुणतास नानक दा तेरे कुरबान बेंद साहेब मेरा मेहरबान राम कली महला पंजवा राम कली महला पंजवा रखन हार दयाल कोट पाव खंड निमुख ख्याल सगला राधे जंत मिली है प्रभ गुर मिल मंत जीन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाव ताकि गही मन ओट बंधन दे होई छोट हृदय जब परमानंद मन माए पय आनंद तारण तरण हर चरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे अपार सुमत सार जित हर सिमरी जय कर कृपा जस के आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाव नानक जाप गुर मिल नाव राम कली महला पंजवा सगल स्यान पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाया मन चंदे सही फल पाया हो सावधान अपने गौर से आसा मनसा पूर्ण हो वह पाव सगल निदान गुर सुराव दूजा नहीं जाने कोई सदगुण निरंजन सोई मानुका का रूप न जान मिलिन माने मान
ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਟੇਕ ਟਕਾਏ ਅਵਰਿਆਸਾ ਸਭ ਲਾਹੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਾਂਗ ਨਿਧਾਨ ਤੰਦਰ ਗਏ ਪਾਵੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜਪ ਮੰਤ ਇਹ ਭਗਤ ਸਰ ਤਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਿਹਾਲ ਰਾਮਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਪਾਲ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਬਿਮਾਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵ ਪੂਰਨ ਹੀ ਸੁਭਾਵ ਅਨੰਤ ਕਰ ਸੰਤ ਹਰ ਜਪ ਸੜ ਸਿਣ ਬੁਝਤ ਰਾਹੀ ਹੀ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਮੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰਹਾਉ ਇੱਕੀ ਕਾਰ ਆਸ ਪਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਪਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ।

जप गोबिंद पढ़ते सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शांद गुरचरण जाका मन लागा नानक दास तिस पूर्ण भागा राम कली महला पंजवा तिस प्रवास किस प्रवास है बिचरे पवन मुण मुख तेरा संगी कवन राम संगीत से गत नहीं जाने पंच बड़वारे से बीतकार माने सुकर सेव जित उदर मीत गुण गोविंद रवि दिन राति सत्संग कर मन की प्रीत रहाओ जन बिहानु अहंकार वाद त्रिपद नया वह विख्या साद भ्रमत भ्रमत महा दुख पाया तुरि न जाई दुत्र माया कामना वे सुकार कमावे या पेई खावे राखन को दूसर नहीं कोय तो निस्तरे जो कृपा होए पत पनीत प्राप तेरु नाम अपने दास को किज दान कर कृपा प्राप कर कृपा प्रभ गत कर मेरी शरण गई नान प्रभ तेरी राम गली महला पंजवा ए लोके सुख पाया नहीं पेड़ धर्म राया हर दुर्गे तो सुबावंत पुन गर्भ नाही बसंत जाने संत की मित्राई कर कृपा दिन हर नामा पूर्व संजोग मिलाई रहाओ गुरु के चरण नित गुरु के चरण चित लागा तन तन संजोग सपागा संत के तूर लागी मेरे माथे किलबुख दुख सगले मेरे लाथे सादगी सच टहल कमानी तब हो ही मन शुद्ध परानी जिनका सबल दर्श डेठा नाम प्रभु का काट काट बूठा मिटाने सब कल कलेश जिस देव जिते सुमह प्रवेश प्रगटे अनूप गोविंद प्राप पूरे नान बख्शंद राम कली महला पंजवा गो गोचारे सारदूल कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हस्ती प्रत पाले अपना पर अपना तर निहाले

संग संत सभा में लेकर बख्याण सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचारे विचारे को होए नानक ताकि परम गत होए राम गली महला पंजवा जो तस पावे सुतिया सदा सदा हर के शरणाई प्राप्त वेन नाहिया न बिया रहा पुत गलतर लखमी दिस एन मैं कसुना सांग लिया विकट गौरी खाय पुला ना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत बगोता गर्भ जो न मह कृत पया पुर भगवान छोड़ नाही जमदूत ग्रासो महापया बोले छोड़ कमावे अवर तृष्णा बूझ बहुत हया असाध रोग उपज संत दुख न देवनासी महाखया जिन्हें नवाज तिन हिस्सा जया पे किन संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म माया राम गली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाय जा कह सिमरन बिरथा न जाई राहो दर्शन पे गत हो निहाल जागी तूर काट जमकाल चन कमल बसे मेरे मन कहे कर सवार सगले तन कहे जाके मस्तक रात कह हाथ प्रा मेरो अनाथ को नाथ पत उदाहरण कृपा ने दान सदा सदा जाइए कुर्बान निर्मल मत देह जिस दान तज विकार बिंस अपमान एक त्याय साधक संग पापना से नाम करांग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रब रह गुण तास दर्श दे तारो प्राप आस नित नानक चितवे सच अरदास राग राम गली महला पंजवा घर दूजा दुप दे ओंकार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईया वगुण मिटे मेरे मीत राव गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मैं होए निवास संसंगत मैं होए उदार नानक पाव जले उत्तर सपार राम गली महला पंजवा गुरपुरा मेरा गुरपुरा राम नाम जब सदा सोहेले सगल बिना से रोग कूरा रहाओ एक राधो साचा सोए जाके सरन सदा सुख होए नी सोहेली नाम गिला की भूख हर सिमरत बिंस सब दुख सहज आनंद करो मेरे पाई गुरपुरे सब चिंत मिटाई आठ पैर प्रभ का जब जाप नानक राका हुआ आप राग राम गली महला पंजवा पड़ताल घर तीजा एको ओंकार सतगुरु प्रसाद नर हर नमस्कारं नर नर है नमस्कारं जलन थलन बसद गगने कंकारं रहाउ हरन तरन पन पुनः करन नय गिरह निरंगहारं गंभीर तीर नाम ही रूच पूच अपारं करन गेल गुण मोल नानक बलहारं राम गली महला पंजवा रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया चले कन कामनी रहाउ भंडार दरब अरब खरब पेख लीला मन सधार न संग गामनी पुत्र कलत्र प्रात मीत और जपर्यो परम मोहयो एह बिरख शामनी चन कमल सर नानक सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नामा तिप दे रे मन उठ ले हो हर नामा जाग सिमर दुरमत पा नास पावे पाद निर्बाना राव बुढ़भाग्य तह जन को जानो जो हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप कोई कह पुन बैकुंठ सदावे अजा मल को अंत काल में नारायण सोदे आई जागत को जोग सरबासत सोगत छिन में पाई नाहन गुण नाहन कश विद्या धर्म कौन गाज कीना नानक बिरद राम का देखो पैदान तेह दीना राम कली महला नामा साधु कौन जुगत आब की जय जात दुर्मत सगल बिना स राम भगत मन पी जय रहाओ मन माया में उर्ज रहो है बुजन काश ज्ञाना कौन नाम जग जग सिमर पावे पद निर्वाना पाए दयाल कृपाल संत जान तबे बात बताई सर्व धर्म मानो तेह किए जे प्रभ कीर्त गाई राम नाम नर निस्बासुर मह निमक एक तार है जम गुत्रास मिट नानक ते अपनो जन्म सुवार राम कली महला नामा प्राणी नारायण सोध लेह छिन छिन उत्कट निस्बासुर वृथा जात है देह रहाओ तरन बुभिखिन स्यो खोयो बाल पालन बालपन ज्ञान वृद्ध पयो अजहू न समझ
कौन कुमातुर जाना मानस जन्म दियो जय ठाकुर सोता क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमर निमुख ना ताको गायो माया कुमद कहाँ करत है संग न काहू जाय नानक चेत चिंता मन होए है अंत सहाय रामकली महला पहला अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े सितारे सोई दिनियर तपत रह सा धरती सुपौन चुलारे जोग जी खिल थाब कैसे जी मिन तलब निवार होवे परवाना करे तिंगाणा कल अखण विचार राहो कित देस न आया सुनिए तीर्थ पास न बैठा दाता दान करे तह नाई महल उसार न बैठा जे को सत करे सो शीजै तब करताप न होई जे को ना उलै बदनावी कल के लखण ए जे सिकदारी तिस खुआरी चक्र के हे डरना ज सकदार बब जंजीरी ता चक्र हथो मरना आख गुणा कल आई है ते जोग केरा रहत पाव से जो गुण दे पाई रहाओ कल कल वाली सरन बेड़ी काज कृष्णा होवा बाणी ब्रह्म वेद अथर बण कण कीर्त लया पत बिन पूजा सत बिन संजम जत बिन काहे जिने उना वो तो वो तिलक चढ़ाव सोच बिन सोचना होई कल पुरवणक देव गुराण पोते पंडित रहे पुराण नानक ना भया मैं रहमान कर करता तू एको जान नानक ना मिले वडियाई एदो उपर कर्म नहीं जे कर होंद मंगण जाइए फिर लामा मिले तही रामकली महला पहला जग प्रभु दे माड़ी बदावै आसन त्याग कहे सच पावै ममता मोह कामण हितकारी न अवधूती न संसारी जुग बैस रहो दुबदा दुख पाग कर कर मांगत लाज न लग रहाओ गावै गीत न चिन्ह आप क्यों लागी निवरे प्रताप गुर के शब्द रचे मन पाए पिख्या सहज बिचारी खाए पसम चढ़ाए करे पाखंड माया मोहे सहे जम डांड फुट खपुर भीख न पाए बंधन बंद आवे जाए बिंदन राख जदि कहा वेह माई मांग त्रै लोभा वेह निंदया नहीं जो तिजाला बुढ़द बुढ़ सर्ब जंजाला भीख करे किंता बहु थटुआ झूठो खेल खेले बहु नटुआ अंतर अगन चिंता बहु जार बिन कर्मा कैसे उतर सपारे मुंद्रा फटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या बिग्यान जेवंद्रे साध लबाना पशु पय नहीं मेट निसाना त्रिप्त लोगा त्रिप्त जोगा शब्द विचार चूक सो सोगा उजल साच जो शब्द होए जोगी जुगते विचारे सोए तुद बहनो न तू करना जोग थाप्यो थापे करे सोहोग जात सत्संजम सच सुचीत नानक जोगी तर पवन मीत रामकली महला पहला कटमण दे मन बैराग ही सुर शब्द ध्वनि अंतर जागी वाजे अनहद मेरा मन लीना गुरबचने सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाइए गुरमकार हर मीठा लग हर हर नाम त्याय रहाओ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेट मेल मिलाए नाम रतन निर्मोल कही रात तराता मेरा मन तीरा हमें ममता रोग न लाग राम भगत है जम गो भाग जम जंदर न लाग मोहे निर्मल नाम हृदय सोहे शब्द विचार भय निरंकारी गुरम जागे दुरमद प्रहारी अंदन जाग रहे लिवलाई जीवन भगत गाते अंतर पाई लिपत गुफा मैं रहे निरारे तस्कर पंच शब्द संगारे

तत्प्रोता जग सुत मर आवे जाए बिन गुर शब्द न सोजी पाए अनहंस शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तो जन ज शब्द पछानी कुरब रया निर्बानी सुन समाद सहज मन राता तजो लोक लोभाए को जाता गुरजले अपना मन मानिया नानक दूजा मेढ समान्या रामकली महला पहला सहागण न करे विचार साई उपर कंकार जिस गुर मेले सोई बेद जाने गुरमत होए हिता हुकम पछाने झूठ ना बोल पांडे सच कहिए हमें जाय शब्द कर लइए राव गण गण ज्योतक कांडी की नी पढ़ सुनावे तत न चीनी सबसे ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बधो न सगली सार नावे तो वे पूज सहल बिन हर राते मैलो महला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुकुत प्राण जप हर कृतार्थ वच वदन वेद विचार आप डुबे के पुत्रा तार कड़कर ब्राह्म जिने जान कोय सतगुर मिले तो सोजी होय गणत गणिय सस दुख जिय गुर की शरण पवे सुख थिय कर अपराध शरण हम आय गुर हर भेटे प्रभु कमाया गुर शरण न आइय ब्रह्म न पाइय परम भुलाइय जन्म मारे आइय जंदर बाद मरे बेकार नारद नाम न शब्द आचार एक पादे पंडित मिसर कहावे दुबदर ते मैल न पावे जेस गुर प्रसादी नाम धार कोट मदे को जन अपार एक बुरापल सची कहे बुझ ज्ञानी सतगुरु टेक गुरमुख बिरले को जानिया आवन जाना मेट समाणिया जिनके हृदय निरंग जिनके हृदय कंकार सर्व गुणी सच विचारे गुरु के पाणे कर्म कमावे नानक सच साच समावे रामकली महला पहला।

शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यवाच बेंती चौपाई। अमरी करो हाथ रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम गावो, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करय, सब बैरण को आसंग रह, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी यह, चुन चुन सत्र हमारे मारी यह, आप हाथ दें मुझे उबर है, मरण काल का त्रास नवर है, उजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त जू करियो रक्षा, राख रियो मय राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

हमारा, नमस्कार तसिहि को हमारी, सगल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सत्रण को पाल मो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर या स्थूला, सापर कृपा दुष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जबद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिर्त देहे तर सब हूँ, जेते बदन सिष्ट सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम।

देव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह भैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उद्भुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हब बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए तहें सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हव ताके ताप तनक में हर हव रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख तेरा खड़ केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल बिग सकल देहे को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता श्रीअस्तु जप ए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला

आवई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निगणना दिन नर के रह भजो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस प्रणिज अर्ध सहस मुंतीन कहिज भाद्रव सुधी अष्टमी रबवारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखयाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत अबजू दोहरा दा जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाद राख मोहे मन क्रम बचन विचार छापई मैना अग्निश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबूने।

विचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन शत्रु हमारे मर गया देख तेग जग में दो छल राखा मह और ना दल तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दा जान कर कृपा करो मोहे हार पुरा मान द्वार तुहे अपना जान करो व्रत पारा तुम साहेब मैं किंकर थारा दा जान दया हाथ उबारो हमरे सब एरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता बिदनन्ना किशन जथा मत चरित्र उचारो चू कोय कबले हो सुधारो कबि बाच दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हो जग माहे ज्योते प्रभु को त्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिबिचार कछ नाहे जल ते उपज सरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आए इस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कैद सुनाए कब बाज दोहरा ठाट पयो मैं जोर कर बचन कहां सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो नितुड़ते आए हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्ग बा सर्ग बरकरा सगरी पुरी समेत चापई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे मिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई समत सत्रह सहस पचावन हाड़ बधि प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सदरव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते कऊ आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभा बहुभेद कहे हम एक ना जान्यो

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया माधाइया राग रतन प्रवार परियां शब्द गावने आईया।

मेरे दुख सब सारना, अंगीकारों करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा।

धारणा तुम्हारी, कबीर चंदन का बिरवा फड़ा बेड़ो ठाक पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसै जो चंदन पास, ढाक दा दरख्त बिलकुल नकम्मा है, लकड़ी भी बेकार है, किसे काम नहीं आने वाली, पर अगर चंदन दे कोल नूं संग मिल गया वो ढाक न रह गया ते बावन चंदन बन गया। ता कबीर साहब जी कहिंदे तुम चंदन हामा रिंड बापरे, संग तुम्हारे बसा नीच रूख ते ऊच भए है, गंध सुगंध निवार।

रही है माधो जैसे मध्यप मखीरा। गज के आखो सतनाम श्री कबीर साहब जी कहिंदे सत संगत नाल भई इउं जुड़े रहिए। किदां महाराज कहिंदे जैसे जिवें मध्यप मखीरा जिवें शहत वाली मच्छी मक्खी जिहड़ी है शहत वाली मक्खी जिहड़ी उह बिलकुल डोमणे दे नाल माखुआं नाल चिंबड़ी रहिंदी है। जे उडारी भी मार जाती है फिर फुलां फलां दा रस जिहा चूस के फिर उहदे ते आके बैठ के शहद इकट्ठा करना शुरू कर दिंदी है। कबीर साहब जी कहिंदे इउं गुरु संगत नाल मिले रहिए ते जिवें उह शहद इकट्ठा करदी है तां इकट्ठा करी चलीए सतनाम श्री। जैसे मध्यप मखीरा जाती ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवा ना कीनी कह रविदास चमारा। सतगुरु महाराज साहब जी की अपार अपार कृपा प्राप्त हुई है संगत विच मिल के गुरु की अमृत बाणी सरवण करके लाहे प्राप्त कीते ने। गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए जीओ इस करके लाहे प्राप्त होए ने। तदों वड्डिया भागा वाले ओ वड भागी हर संगत पाव है भागहीन भ्रम चोटा खाव है बिन भागा सत संग।

0: गुरु प्यारी सात संगत इतनी हाजरी परवान करते हैं, उल्ला चुका लिखिमा करो, आशीष बख्शियो, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संघ जी, आप जी नू पितर बाणी शब्द कीर्तन जोड़े सन भाई जसपाल सिंह जी, श्री पाउंटा साहब जी वाले कीर्तनी जथा भाई साहब जथे बहुत बहुत धन्यवाद। हम साढ़े पास भाई बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी हजूरी रागी श्री दरबार साहब जी वाले का कीर्तनी जथा पहुंचा है। उन्होंने गुरुद्वारे पहुंचने ते संगत नूं जिया कहिंदे हां जी, सारा हफ्ते आप जी नूं शाम दीवान कीर्तना जोड़नगे, उन्हां पासों शब्द कीर्तन राही जुड़ना करो। आने वाले एतवार धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिवस, एक सितंबर मंगलवार को श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश दिहाड़ा है जी। इस संबंध में दीवान सजनगे, एतवार आने वाले एतवार सवेरे 9 बजे के करीब निशान साहब चौड़ा साहब की सेवा होगी। आप जी सेवा करके हाजरी भर के राह प्राप्त करनी, जो हम कीर्तन जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रहाओ। जागत रहे तिनी प्रभ पाया शब्दे हों मैं मारी, गिरही महे सदा हर जन उदासी ज्ञान तत् बिचारी। सदगुर सेव सदा सुह पाया हर राख्या उर तारी, यह मनुआ दैद स्थाम दा दूजे पाए खुवाया, मन मन मुख मुगद हर नाम ना चेतै बिरथा जन्म गवाया। सतगुर भेटे ता

सब ब्याध मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा हो ना तूण है छुट्टे है निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चितो चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल देहो सज्जन सिसड़िया ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल कर कर हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छह कर छह गुर छे उपदेश गुर गुरे को वे सनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख उड़ाई तोए रहाओ विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिति वारी महो होवा सूरज को रुतनेक नानक करते के ते वेस राग तना श्री महला पहला गगन मह थाल रव चंदीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल यान लो पौन चौरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए बहुखन्ना तेरी आरती अनता सब दवाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध भिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आहि पियासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरलिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडोत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साधना जानिया तिन अंतर हम है कंडा है ज्यो ज्यो चला है चुभ दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण बहु खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है राग गोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सहेला औद घटे दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरिहो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एहो रस अगत कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहा जो हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पाहो सुख सहजे।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

बेद उपाय। हर सिमरन पै सिद्ध जती दाते, हर सिमरन नीच चहु कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना।

नाथ, कर कर नाथ अनाथ, सरन तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सदमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई।

दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग विभागी पाई।

त्राप पेख अनेक अगन नहीं बुझे कोड़ पाव दरगह नहीं सिजय शूड़ सनाही ओ पयाल बोहे बया पै माया जाल अवर करतूत सगली

पिहि सुरपंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहांस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाई सो आवे ना चीत जो बैराई तास प्रीत बरुआ के गृह भीतर बसे अंध केल माया रंग रसे

लो मोह बिनस जाय अहमेव नानक प्राप शरणागति ही कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाए ते ठाकुर कवराख मन माहे जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कव सिमरत परम गत पावे जेह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर ते सिमरह तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जेह प्रसाद पार पटंबर हंडावे तिसे त्यांग कत अमर लुभावे

जप सोए, आप जपाए जप सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते होए प्रिंगास, प्रभु दया ते कमल मिंगास।

सुरदेव साधु कै संग पाव पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध के संग नहीं कस काल दर्शन भेट तहोत निहाल साध के संग रूहत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग ईहा ऊहा सुहेला सा संग विश्रुत हर मेला जो इच्छे सोई फर पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते विसरे साध संग सर पर निहतरे

वसे ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम दार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जागत ब्रह्म ज्ञानी भूत आगत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सै निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का

ही श्लोक उर तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पेख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नाम स्वीकारे नानकोह अपरस सगल तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना।

परसु वैसनो सो जसु प्रसो प्रसान बिसन की माया ते हो पेहन कर्म करत होवे निह कर्म तिस बहनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बांझे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तने अंतर सिमरन गोपाल सबिहु पर होत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको बैसनो परम गत पावे भगवती ही भगवंत भगत कारंग सगल त्यागे दुहट का संग

कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभेगात्मिन कोर कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माह कई कोट प्रदेश परमाह जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जान है करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर पे उपाय कई कोट पाथर वृक्ष निजाय कई कोट पवन पानी व्या संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान विंदर सर छत्र सगल समगरी अपने सूत धारे नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तारे

कड़ब जोनी फिर है। कई कोट बैठ तही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाहना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कै हाथे।

ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै साध कुरबान सलोक सुखी बसे मस्कीनी आव निवार तले बड़े बड़े अहंकारी नान गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतरराज मान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे

काहु करने हार। ओते पिन कहु कछोए थान, त्रयंतरे कैसोए अपने जल ते आव करने हार। कवत करे रंग अपार, मन महिया मन प्रेमाहि नान, कीमत कह न जाय। सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद, किने वखिया नी साच।

प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते हावो सास गिरास। सब कुछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कुथी आपने खेले आप करने हर दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिसा प्रणाम दे। बिड़भागी नानक जन से श्लोक, तरहो सियान सुरजन हो सिमर हो हर हर राय, एकास हर मन रख हो नानक दू परम पव जाय अष्टपदी मानो की टेक।

जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेव कव कहते डरे जैसा सा तैसा दृष्टा अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब कहे मूल नानक सो सुख मसोई अस्थूल नह कहे जन्मे नह कहे मरे आपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्टा दृष्टा गकारी तारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आपन के जुगत राचे थापे उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारन तार रह ब्रह्मांड अलाखे अपेह पुरख प्रताप आम जपायत नानक जाप जन प्रभ जाता सुसोभावंत सगल संसार उदरै त्रिमंत प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख सारने आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जाप पह निहाल उनकी सेवा सोई लागे जसनो कृपा करहे बड़भागे नाम जपत पाव है विश्राम नानक तन पुरुष कौतुम कर मान जो कैसे करे सो प्रभ कह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपाह होवे सोहे करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टान जेहते बजे तह माय समाये हुए सुख निदान उन्हों बनाए आपको आप दिनो मान नान प्रभ जाने को जान सलोक सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जानन हार जा कै सिमरनी उदरी है नानक तिह बलिहार अष्टपदी

निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत हे जने आवे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय को होए सच करनी सच दागी रहत सच हृदय सत मोह कहत साची दृष्ट साचा ओंकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप नरेख नरंकेश त्रिहुगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानक काज सो होवै सो प्रसन्न अष्टपदी।

गाओ। गुण गाव तेरी उतरे समैल, बिनस जाए हमे बिख फैल। होहे अचिंत बसे सुख नाल, सास गुरास हर नाम संभाल। शार सियाणम सगली मना, साध संग पावे सच धरा। हर पूंजी संच करो बेहारी, हां सुख दर गय जयकार। सरब निरंतर एको देह कहो नानक, जाके मस्तक लेख।

अशंख मूर्ख अंध घोर, अशंख चोर हराम खोर, अशंख अमर कर जाहे जोर, अशंख अलब डतया कमाहे, अशंख पापी पाप कर जाहे, अशंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, अशंख मलेश मल पख खाहे, अशंख नंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाम, आगम आगम असंख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुनगाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग बखाण, जिन ए लिखे तिसर नाहे, जे फरमाए तिब ते पाहे, जेता कीता तेता नाहु, विण नामे नाही को थाऊ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हथ पैर तन देह, पानी धोते उतरो सो खेह, ऊत पलीती कपड़ होए, दे साबूण लइया ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग, ओ धुपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे भी जापे ही खाहो, नानक हुक्मी आव जाहो। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनिया मन्या मन कीता पाहो, अंतरगा तीर्थ मन लाहो। सबगुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थाद बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाहो। कवन सो वेला वक्त कवन,

प्रयात छंद नमस्तुल परिणामे समस्तुल परिणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासेन्द्र कामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल करिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियं करिं करिमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तव प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के सुर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात कऊ ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बन एक रति के माते मतंग जरे जन संग अनुपतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिवद न्याव शीसना जात बिचारे ते भय तो कह भय भूपतंद को नागे पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाज ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंस ही है राज हजारे भूत भिख भवान के भूपत गौन करे नहीं जात बिचारे सिरपा सिर भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दे आदम दान सुसंजम ने मनेक बसेख है वेद बरान कदेव करान जमीन जवान सुबान के पेखा पावन आहार जति जत धार से सो विचार हजार को देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखा है शुद्ध सिपाह दुरंद सुशासना दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख ले ना हलाएंगे तोर अरीर मरोर वासन माते मतंगन मान मरेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलाएंगे वीर पार बड़े बरियार बचारे सार की धार बशैया तोर देस मिलिंद वासन माते गजान के मान मरैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात निचक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव रंद साजर भूत भविख भवान जपाएंगे जीव जते जाल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाट जैतुन पापन के बह पुंज खपाएंगे साध समु प्रसन्न फराय जग सतर सबय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र रात बजंत लोग राज करेंगे कोट स्नान गजात दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्मेश्वर विष्णु सचिव तंत फसे जम फास भरेंगे जे नार शरीर पात के प्रा सह भक्त नर फे ना देह ना ते नर फेर ना देह तरेंगे कहा पयो जाओ दौलोचन मूंद के बैठ भक्त ध्यान लगायो नाथ फिर सास समंदरन लोग पर लोग गवायो वास क्यों विख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह बितायो साज कहाऊ सुन ले हो सबैजन प्रेम कियो तिन ही पर पायो काहू लै पान पूज धरयो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लै खुरवाची दिशा में काहू पछाको सी सिनवायो गो बदान गो पूजत है पास कोमरदान को भोजन दायो गूर गिरया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कौ बतान को पूजत है पास कोमरदान को भोजन दायो गूर गिरया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाद रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सुबह तुम गावो आभाद मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवाय करतारा मोर अच्छा निज करद करे आए सब एरन गुआ संघरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर ना त्याऊ जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आभाद मजे उभरिया है मरण काल का त्रास निभरिया है उजो सदा हमारे बच्छा श्री सुजू करो रक्षा राख रहो मोय राखण हारे साहिब संसाए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश गंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जबन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दैन जशन बजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा
नमस्कार्थ सी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दीजो सत्रण को बल मोहबद कियो कट कट के अंदर की जानत परे परे की पीर पशानत चीटी ते कुंचरिया सूला सफर कृपा दुष्ट कर भूला संदन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

ईत ऊत नहीं बिछड़ा सो संगी गनिया बिन सजाए जो निमुख मह सो अल्प सुख भनिया रहाउ प्रत पालै अप्याओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अचल अछेद अपार प्रभ ऊचा जाका रूप जप जप कर है आनंद जन आचरज अनूप सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगा दान प्रभ रेन पग सादा सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगा दान प्रभ रेन पग सादा वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बड़हंस की वार महला चौथा। लला बहलीमा की धुन गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा। शब्द रते बड़हंस है सच नाम और तार सच संग रह है साध सच रह है सचा नाम प्यार। सदा निर्मल मैल न लगई नदर कीति करतार नानक हों तिनका बलहार न जो अनदन जप है मुरार महला तीजा। मैं जानिया बड़ा हंस है ता मैं किया संग जे जाना बग बपड़ा ता जन्म न देंदी अंग महला तीजा। हंसा वेख तरंदिया बगा पे आया चाओ डुब मुए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ पौड़ी तू आपे ही आप है आप कारण किया। तू आपे आप निरंकार है को अवर न बिया तू करण कारण समर्थ है तू कर है सोथिया तू अणमंगया दान देवना सब नाहा जिया। सब आखो सतगुरु वाह वाह जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भय बिच सब आकार है निरपौ हर जियो सोई सतगुर सेव्या हर मन बसै तिथे भाव कदे ना होई। दुश्मन दुख तिसनो नेड़ न आवै पोहे न सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रख सी कारज सवारे सोए महला तीजा। एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फन जाहे जिन्नी सतगुरु ना सेव्यो से आए गए पछताहे नानक सच रते से न बिछड़ा है सतगुर सेव समाहे पौड़ी। तिस मिलिया सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतम जन होमै बिच हमारी सो सतगुर पूरा धन धन है जन हर उपदेश दे सब सृठ सवारी। नित जप्यो संत हो राम नाम भाव जुल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसिया गुर बिटड़ हो हों सद वारी सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं सुखसार इथे मिलन वड़ियाइया दरगह मोख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनण सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिलै सच्चै नाय प्यार सच्चै शब्द हरख सदा दर सच्चै सच्यार नानक सतगुर की सेवा सो कर जिसनो नदर करै करतार महला तीजा। होर बड़ाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिगवास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिखरास बिख खाना बिख पहनना बिख के मुख ग्रास ऐथ दुखो दुख कुमावना मोया नरक निवास मन मुख मोहे मैले शब्द न जाननी काम क्रोध विनाश।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਛੋਡਿਆ ਮਨ ਹਟ ਕੰਮ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸ ਜਮ ਪਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕੁਮਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਪੌੜੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸਾਧ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਜਿਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪਾਇਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪਗੀ ਪਾਵਹੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭੁੱਖ ਗਈ ਭੇਖੀ ਭੁੱਖ ਨ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਅੱਗੇ ਦੂਣੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨ ਆਇਓ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੈ ਖਾਏ ਮਨ ਹਟ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਏ ਇਸ ਭੇਖੈ ਥਾਵਹੁ ਗ੍ਰਹੋ ਭਲਾ ਜਿਥੋ ਕੋ ਬਰਸਾਏ ਸਬਦ ਰਤੇ ਤਨ ਸੋਝੀ ਪਈ ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਕੁਮਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸੇ ਭਲੇ ਜਿਨ ਕੀ ਪਤ ਪਾਪ ਹੈ ਥਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ

आसे। माया भयंग सर्प है जग घेरिया बिख माए, बिहका मारन हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए।

मन आवन जा न सुजई ना सुजे दरबार माया मोए पलिटिया अंतर अज्ञान गुबार।

साचा भेटै हर मन वसै पावै मोख द्वार। नानक हुकम वरतै खसम का मत पवी फिरे चल चित मन मुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछै मित। गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित जमण मरण का मूल कटी है ता सुख होवी मित। भुलिया आप समझाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी करण पलाह करे। श्लोक महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वडभागिया सुहागणी जिना गुरमुख मिलिया हर राए अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए। वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोई जित मिलिया ते कुतरै तन मन शीतल होए। वाहो वाहो सतगुर सतपुरख है जिसनु समत सब कोए। वाहो वाहो सतगुर निर्वैर है जे निंदाफत तुल होए। वाहो वाहो सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार। वाहो वाहो सतगुर निरंकार है जिस अंत न पारा वार। वाह वाह सतगुरु है जी सच दृढ़ाए सोए। नानक सतगुर वाहो वाहो जिस ते नाम प्राप्त हुए। हर ब्रह सच्चा सोहेला गुरम नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद। वड़ भागी हर

मन मोह सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए। पुत कलत कुटुंब है माया मोह वधाए, दरगे लेखा मंगी है कोई अंत न सकी छड़ाए। बिन नावे सब दुख है दुखदाई मोह माए, नानक गुरमुख नदरी आए आ मोह माया बिछड़ सब जाए। गुरमुख हुकम मने सकेरा हुकमे ही सुख पाए, हुकमो सेवे हुकम राधे हुकम समय समाए। हुकम वरत नेम सुज संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागण।

आए। मन मुख हुकम ना बुझे बपुड़ी, नित होमै कर्म कमाए। वरत नेम सुच संजम पूजा, पाखंड भरम ना जाए। अंतरह कसुद माया मोहि बेदे, ज्यों हस्ती शार उडाए। जिन पाए तिसे ना चेते, बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक प्रपंच किया।

अणदिन चिंता चिंत बै चिंता बद्दा जाए जमण मरण चुकई होमै कर्म कमाए गुर सरनाई उबर नानक लय छाए सतगुर पुरख हर त्याए दा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सिम दे हर मेले गुर मिलाए पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए गुरसिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंघाए गुरसिखा की हर धूड़ दे हां पापी पी गत पाए तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुरसिखा नु

पंचोनारि पंचम हरख दसाग सुनावह बंगालम मद माधव गावह ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलप है संग रागनी पंचो थप है गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनासरी ए पंच गाई माल राकव सग संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खाओ खट आओ पौरा नाद गाए अष्ट माल को सग संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी लै पार जा संग लाई पंच वार जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीप की बारी कशेली पाट मंजरी टोडी गई अलाप कामोदी गुजरी संग दीप के थाप कालंका कुंतल रामा कमल कुसम चंप के नामा गौरा कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीप के जाना सामिल श्री राघव गावह पांचो संग बरंगन लावह बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे असावरी ते पाश सिंधवी लापी श्री राग सिंह पांचो थापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुम हमीर अष्टमेघ राघव गावह पांचो संग बरंगन लावह सोरड गुण मलारी तुणी पुन गावह आसा गुण गुणी ऊचे सुर सोह पुन कीनी मेघ राग सिंह पांचो चीनी बैरा तार गाज दर के दारा जबली तार नाटे ओ जल तारा

साजन पे सरसे उरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहा पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहे गुरु जी।

0: सिमर सिमर सुख पाओ, काल कलेश तन माहे मिटाओ, सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विश्राम,
1: सुख मणि सुख
0: अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम,
1: सुख मणि
0: सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम,
1: धन धन राम
0: दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, धन धन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया,
1: पूरी
0: होई करामात
1: आप सृजन हारे तारे,
0: पूरी होई करामात आप सृजन हारे तारिया, सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, सिखी

मन विलास पै साहिब के अचरज देख बडाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई।

0: मंगलता गोविंद संग सच भोजन जोर प्रीत लगी हर नाम से हो ए हस्ती कोड़ प्रीत लगी हर नाम से हो ए हस्ती कोड़
1: राज
0: खुशियां कणी त्याय मुख नमोड़ राज मिलख खुशियां कणी त्याय मुख नमोड़ टाडी दर प्रभ मंगणा दर कदे न छोड़ टाडी दर प्रभ मंगणा दर कदे न छोड़ नानक मंतन चाओ एहो नित प्रभ को लोड़ नानक मंतन चाओ एहो